0: अन्ना अन्ना जगता छेरा शला निगा लेथप क चकु हिं जगिया चकु छमो जगरे जि तंगना ताची मासी ना नि मथुनी हचि कष्टा पो न्याम सुंडा दक खरु न्याम क्रियेनी लीरा जमा जन तंदोगी योनी तमो जगिं जि खनिगे जेंत छमसंग नंगनी अरंग दोकु ग जेनर सुंगी दायो जगिया अरे तारकवता खजलान दिसा छमरा छरगिन दिसा अरगुई नोग जेमसन छसगिन दि टोको छों छों समाग खि मशीना शिफ्ट न्योंजा पोटार जिमग छतंग शली डोंग सेनी जोरी डोंग युपाज शेको मुन जगाता सोशु जेवी जम्मु अरंथंग जेंथा तंग जावी गलायस गा चियोचिया ᱠᱟᱞᱟᱭᱮ ᱛᱮᱛᱟ ᱥᱤᱜ ᱢᱟᱨᱜᱤᱱ ᱫᱟᱝ ᱪᱷᱤᱱᱤ ᱠᱨᱟ ᱢᱟᱨᱜ ᱪᱷᱤᱥᱣᱟ ᱛᱤᱱᱟᱨᱟ ᱠᱟᱞᱟᱭᱮ ᱛᱮᱠᱮ ᱪᱷᱤᱱᱤ ᱛᱟᱢᱚᱡᱜᱤ ᱤᱱᱥ ᱦᱟᱨᱤᱭᱮ ᱴᱟᱨᱟ ᱧᱮᱢᱟᱡᱜᱟ ᱦᱟᱥᱛᱟᱢ ᱢᱟᱞᱜᱟ ᱡᱟᱢᱩᱜ ᱠᱟᱞᱟᱭᱮ ᱫᱟᱝ ᱪᱷᱤᱝᱜᱩ ᱛᱚ ᱩᱣᱟᱨ ᱥᱚᱝᱡᱜᱤᱭᱟ ᱡᱟᱢᱩᱜ ᱤᱧ ᱛᱮ ᱥᱮᱢᱫᱤ ᱤᱨᱤ ᱧᱮᱝᱜᱨ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱥᱤᱢᱟ ᱥᱚᱝᱟ ᱦᱟᱨᱜᱚᱢᱩ ᱟᱸᱜᱤᱞ ᱢᱟᱠᱷᱟ ᱛᱮᱜᱤ ᱥᱮᱢᱠᱨᱤ ᱠᱚᱱᱚ ᱟᱜᱩᱱᱟ ᱚᱱᱩᱜ ᱪᱷᱟᱨᱟ ᱥᱮᱞᱟᱱᱤ ᱦᱤᱱᱩᱡᱜᱤᱱᱤ ᱠᱷᱟᱹᱱᱤᱜᱨᱟ ᱥᱮᱢᱫᱤᱜᱤ ᱭᱮᱥᱚᱨᱟ ᱪᱷᱟᱨᱜᱤᱝ ᱥᱮᱪᱩ
1: ᱚ ᱛᱚᱢᱟᱱᱫᱩ ᱛᱚᱢᱟᱱᱫᱩ ᱫᱚ ᱪᱷᱚᱢᱟ ᱥᱚ ᱚᱱᱤᱜᱟ ᱫᱮᱱᱫᱤ ᱚᱱᱤᱜᱟ ᱡᱤᱱᱛᱚ ᱥᱤᱡᱩᱱᱟ ᱟᱱᱟᱢᱤᱭᱚᱝ ᱠᱩᱱᱚᱜᱟ ᱠᱚᱨᱤ ᱫᱟᱞᱤᱛᱟ ᱟᱫᱩᱠᱩ ᱜᱟᱞᱟᱭᱨᱟ ᱥᱩᱢᱟ ᱛᱷᱢᱱᱨᱤᱭᱟ
0: ᱛᱟ ᱡᱤᱥ ᱥᱮᱞᱟᱜᱨᱟ ᱥᱮᱢᱫᱟᱝᱥ ᱜᱤ ᱡᱟᱯᱛᱟᱝᱤ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱚᱠᱟ ᱪᱷᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱱᱤᱜᱨᱟ ᱥᱮᱢᱫᱤᱜᱤ ᱤᱱᱫᱤᱨᱚᱠᱚ ᱥᱩᱝᱤ ᱫᱩᱠᱩ ᱜᱟᱞᱟᱭ ᱪᱟᱱᱟ ᱥᱟᱜᱟᱜᱚ ᱛᱟ ᱡᱤᱱᱚ ᱪᱷᱮᱨᱜᱤᱱᱡᱟ ᱛᱷᱟᱯᱟ ᱥᱩᱝᱤ ᱠᱷᱟᱹᱱᱤᱜᱟ ᱥᱩᱝᱤ ᱫᱩᱠᱩ ᱜᱟ ᱞᱟᱭ ᱪᱟᱡᱩ ᱥᱮᱢᱛ ᱪᱮᱛᱟᱝ ᱡᱤᱭᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱵᱟᱞᱤ ᱡᱚᱱᱛᱟ ᱪᱷᱟᱨᱟ ᱥᱮᱞᱟᱱᱤ ᱧᱤᱱᱥᱤᱜ ᱜᱟᱜᱟ ᱡᱟᱥᱮ ᱡᱟᱦᱪᱤ ᱠᱟᱨᱟᱝᱟᱛᱟ ᱥᱩᱜᱡ ᱪᱷᱟᱢᱡᱤᱞᱟ ᱥᱩᱝᱤ ᱦᱥᱟᱨ ᱪᱟᱞᱤ ᱡᱟ ᱪᱟᱜᱟᱝᱟ ᱢᱟᱛᱟ ᱡᱟᱢᱩ ᱜᱟ ᱞᱟᱭ ᱛᱟ ᱥᱟᱛᱱᱟ ᱭᱚᱱᱩ ᱜᱟᱥᱠᱤᱢᱟ ᱡᱤᱜᱪᱤᱱ ᱟᱭᱜᱪᱤᱱ ᱡᱟᱵᱨᱟ ᱥᱮᱜᱩᱱᱩ ᱛᱤᱥᱠᱤ ᱛᱮᱝᱤ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱟᱨᱜᱟᱢ ᱡᱤᱠᱱᱟ ᱡᱤᱜᱤ ᱟᱵᱤᱭᱚᱱᱩ ᱠᱚᱥᱚᱝᱥ ᱭᱮᱱᱟᱨᱟ ᱡᱟᱵᱨᱟ ᱜᱮ ᱪᱷᱮᱢᱛᱟ ᱛᱟᱥᱤᱜ ᱥᱛᱟᱢᱵᱩ ᱤᱱᱤ ᱠᱟᱨᱟ ᱧᱮ ᱢᱟᱨᱜᱚ ᱛᱟ ᱟᱨᱜᱩᱝ ᱜᱮ ᱥᱭᱟᱨᱟ ᱱᱟᱝ ᱟᱯᱨᱤᱱ ᱡᱩᱢᱟᱛᱢᱱᱤ ᱛᱟᱢᱚᱥ ᱠᱟᱢᱩᱡ ᱫᱟ ᱤᱱᱛᱟᱝᱥ ᱪᱷᱮᱨᱟ ᱥᱮᱞᱟ ᱱᱤᱜᱟᱨᱟ ᱛᱷᱟᱢ ᱢᱮᱥᱩᱝᱤ ᱧᱤᱝᱜᱤᱱᱟ ᱡᱟᱵᱨᱟ ᱜᱮ ᱟᱨᱜᱩᱱᱡᱢᱱᱤ ᱭᱟᱨᱱᱡᱩ ᱢᱟᱨᱱᱡᱩ ᱤᱨᱤ ᱫᱟᱝᱨ ᱡᱟᱵᱤ ᱫᱟᱪᱤᱭᱟ ᱧᱮᱢᱟ ᱡᱜᱟᱛᱟ ᱠᱟᱡᱟᱵᱨᱟ ᱪᱷᱟᱝᱜ ᱡᱮᱝᱜ ᱥᱷᱟᱣᱨ ᱡᱜᱱᱤᱛᱟ ᱡᱚᱜᱟᱡᱜᱟ ᱪᱮ ᱪᱮᱡᱜᱟᱛᱟ ᱡᱟᱵ ᱠᱷᱤᱡᱜᱱᱟ ᱠᱷᱟᱡᱤ ᱢᱟᱝᱟ ᱢᱟᱝᱟ ᱡᱜᱞᱤᱜᱤ ᱛᱟᱠᱷᱨᱤ ᱩᱝᱜᱚᱱᱚ ᱥᱮᱞᱟᱜ ᱨᱤᱜᱛᱟᱝᱥ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱥᱮᱞᱟ ᱪᱷᱩᱝᱛᱟᱝ ᱪᱮᱠ ᱡᱜᱟᱛᱟ ᱡᱩᱝᱤ ᱭᱟᱨ ᱡᱜᱤᱱ ᱪᱮ ᱧᱩᱝᱜᱚ ᱱᱟᱨ ᱫᱟᱠᱚᱜᱟ ᱞᱟᱭ ᱟᱡᱟᱵᱨᱟ ᱜᱮ ᱠᱤᱛᱟᱝᱤ ᱪᱷᱮᱢᱟ ᱡᱜᱤ ᱡᱜᱤᱭᱚᱠ ᱛᱟ ᱪᱷᱚᱨᱟᱝᱜᱤ ᱛᱟᱢ ᱱᱟᱪᱩᱜ ᱛᱮᱱᱟ ᱠᱟᱞᱟᱭᱮᱛ ᱪᱷᱟᱨᱟ ᱠᱷᱤᱨ ᱭᱩᱝᱛᱷᱟᱵᱥᱤ ᱛᱟ ᱢᱟᱭᱤᱴᱤ ᱱᱤᱪᱩ ᱠᱷᱟᱢᱵᱟᱠᱱᱤ ᱥᱤᱱᱡᱚᱣᱟᱜᱚ ᱛᱟᱡᱤ ᱥᱮᱱᱚ ᱛᱟ ᱪᱟᱜᱤ ᱪᱷᱟᱠᱷᱨᱤ ᱛᱟ ᱦᱤᱪᱤᱜᱤ ᱟᱞᱟ ᱪᱟᱢᱥᱩᱝᱤ ᱦᱟᱨᱠᱟᱱᱞᱤᱜ ᱡᱚᱨᱱᱟᱱ ᱛᱟᱨ ᱥᱤᱜ ᱥᱤᱜ ᱥᱤᱜ ᱥᱤᱜ ᱥᱤᱜ
2: ᱪᱮᱛᱨᱟ ᱪᱤᱛᱩᱝ ᱪᱮᱛᱨᱟ ᱪᱤᱛᱩᱝ ᱱᱟ ᱥᱩᱝᱤ ᱟᱞᱟᱭᱮ ᱠᱷᱤᱨ ᱭᱩᱝᱛᱷᱟᱵᱤᱭᱟ
0: ᱛᱟ ᱡᱤᱵᱥᱮᱞᱤᱛᱟ ᱥᱮᱨᱟ ᱟᱞᱟᱭ ᱞᱤᱝᱜ ᱵᱟᱥᱚᱱᱥ ᱫᱤᱛᱥ ᱛᱟᱜᱮ ᱡᱤᱝᱜᱚᱨᱱᱚ ᱡᱤᱜᱤᱱᱤ ᱢᱚᱦᱚᱢᱟ ᱡᱟᱜᱟᱛᱤ ᱢᱚᱢᱥᱨ ᱪᱤᱵᱤ ᱜᱟᱞᱟᱭᱟᱛ ᱥᱮᱨᱟ ᱠᱤᱨᱤ ᱭᱩᱝᱤ ᱪᱷᱟᱨᱟ ᱥᱮᱞᱟ ᱱᱤᱜᱞᱟᱜᱟ ᱯᱷᱴᱟᱛᱟᱱᱚ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱨᱟ ᱥᱮᱞᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱛᱚᱠᱚ ᱚᱨᱜᱟᱛᱟᱝᱤ ᱟᱱᱟᱢᱫᱟᱝ ᱥᱟᱢᱫᱟᱝ ᱥᱮᱥᱩᱨᱟ ᱪᱷᱟᱨᱜᱤᱝ
1: ᱚ ᱢᱚᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟᱴᱤᱱᱪᱤ ᱜᱚ ᱢᱚᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟᱴᱤᱱᱪᱤ
0: ᱛᱟ ᱡᱤᱨᱤ ᱥᱮᱞᱟ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱠᱷᱟᱛᱩᱱ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱜᱮᱡᱤ ᱡᱟᱜᱟᱛ ᱦᱟᱫᱤᱢᱩ ᱪᱷᱟᱢᱵᱩ ᱜᱩᱱᱤ ᱥᱮᱨᱟᱱ ᱡᱚᱜᱟ ᱡᱤᱜᱛᱟᱥ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱪᱷᱟᱨᱟ ᱥᱮᱞᱟ ᱱᱤᱜᱤ ᱠᱷᱟᱨᱱᱤᱜ ᱥᱟᱢᱫᱩᱝ ᱜᱟᱨᱟᱢᱩ ᱛᱚᱱ ᱛᱷᱚᱣᱟ ᱢᱟᱱᱛᱚᱱᱚ ᱥᱤ ᱜᱟᱨᱜᱟᱭ ᱛᱟ ᱨᱮ ᱢᱟᱥᱤᱨ ᱠᱚᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱯᱷᱚᱴᱟᱝ ᱱᱟ ᱞᱚᱜᱡᱩᱭᱤᱥ ᱠᱷᱟᱨᱱᱤᱜᱟ ᱥᱮᱨᱟᱱ ᱡᱚᱜᱩᱱᱩ ᱞᱟᱣᱟᱨ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱷᱩ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱦᱥᱛᱟᱝ ᱥᱟᱢᱱᱤ ᱟᱵᱟᱞᱵ ᱫᱚᱠᱩᱛᱟ ᱨᱟᱝᱟ ᱥᱮᱡᱟ ᱪᱤᱠᱚᱱᱤ ᱛᱚᱢᱩᱜᱟ ᱨᱟᱯ ᱠᱷᱟᱡᱜᱟ ᱛᱷᱚᱱᱛᱟᱝᱥᱤ

0: अन्ना अन्ना जगता छेरा शेला निगा लीथप के चकु हिंज गया चकु छमो जगरे जितना ताची मासी ना नी मथुनी खचे कष्टा पो न्याम सुंदा दक करू न्याम क्रियेनी लीरा चमा जन तंदोगी योनी तमो उसकी हिंज खनिगे जेंत छमसंग नंगनी अरंग दोकुगा जनर सुंगी दायोज गया अरे तारकवता खजलान दिसा छमरा खेरगिन दिसा अरगुई नुग जेमसन छसगिन दि टोकु छों छों समागा खि मशीना शिफ्ट न्योंडा पोटार जिमग छतन शली डोंग सेनी जोरी डोंग युपास शेको मुन जगाता फोशु जेवी जम्मु अरंथंग जेंथा तंग जावी गलायस गा चियोचिया ग्लाय तेता सिग मर्गिन दंग छिनी करा मर्ग छिशुवाती नारा ग्लाय तके छिनी तमोज यंस हरे टारा नियमाजगा हरे टारा नियमाजगा हस्तम मालगा जमुग ग्लाय दंग छिंगु तो उवर सोंस गिया जमुग यंग ते सेम दिगिरी निंगर खानंगा सीमा सोंगा हरगोमु अंगिल माखा तगी सेम क्रे कोनो Guna unuga chara shala nigi xin uzgini, ka nigi ra semdigi yashora. Chargi ngi shekyo.
1: Oho, ta mandu, da tsama tsawu aniga dhendayi. Aniga jinta seju na anamyangu nga kori dalita, adukku ga alaya ra shung matamnar ya.
0: Da zizg. Shala gara shemdangzgi jabdangi. Ya, ta chukka, ta nigi ra semdigi indirako, Sungi dhukku ga ghalaya tsaana shaaga gu?
2: Da zinu, chergin ra thapa shungi, kanyiga sungi dhukku ga ghalaya tsaaju semtha jatang ziya.
0: Da ni wali zonta, chara shala nyigi nyinshig gaga jasa jahchika ranga ta, shugzha tsamjila sungi khsar chali, tsaa tsaaga nga ma ta, zamu ghalaya ta, Sa tanayonu gashkin maa jirchin. Ayagchin zavra se gunu tishki tangi.